कि अब दोनों बेकरार हो जाए, रोके न रुके इश्क का आबशार हो जाए, न तुम रहो न हम रहे, इस कदर आ इस जहां के पार हो जाए।

पुष्पा पुष्पा पुष्पा पुष्पा।

SBS South Asian.

चलो आखिरी मुलाकात को यादगार बना देते हैं, जाते जाते तेरा ये वहम भी मिटा देते हैं। एक ही खासियत थी तुम में कि तुम्हें हम चाहते थे, आज तक यही झूठ कहा था तुमसे, चलो अब सच बता देते हैं।

0: SBS South Asian.
1: Yeah. Hattie boy.

0: SBS, a world of difference. You're with SBS Hindi on mobile, online and on radio.
1: आप सुन रहे हैं SBS Hindi मोबाइल, ऑनलाइन और रेडियो पर.
2: नमस्कार, नमस्ते, सुस्वागतम. मेरा नाम है स्वाति शर्मा और SBS हिंदी के मेलबर्न स्टूडियो से हिंदी कार्यक्रम लेकर मैं एक बार फिर से हाजिर हो गई हूँ आज यानी शनिवार 23 मई 2026 को. दोस्तों, आज है साल का 143वां दिन. कैसे हैं आप? कैसा चल रहा है आपका वीकेंड? अब बहुत समय बाद हमारी मुलाकात हुई तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आज आप सभी से मिलने के लिए. तो आइए फटाफट से प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं. सबसे पहले प्रोग्राम का शुभारंभ करते हैं इस धरती के पूर्वजों और कुलीन राष्ट्र के वुरुंजरी और विवरुण लोगों को सम्मान के साथ प्रणाम करते हुए. साथ ही जिनकी भूमि से यह कार्यक्रम प्रस्तुत किया जा रहा है उन सभी मूल निवासियों और टॉरस स्ट्रेट आइलैंडर भूमि के पारंपरिक मालिकों का भी हम आदरपूर्वक सम्मान करते हैं. तो प्रोग्राम में आज क्या कुछ होगा उसके लिए आइए एक फटाफट नज़र डाल लेते हैं प्रोग्राम की रूपरेखा पर. सबसे पहले सुनेंगे देश दुनिया की मुख्य सुर्खियां. दोस्तों, हाल ही में श्री नागेश सिंह ने ऑस्ट्रेलिया में भारत के नए हाई कमिश्नर के रूप में पदभार संभाला है और इस हफ्ते वे सिडनी के व्यवसायी समुदाय से भी मिले. तो क्या कुछ बातचीत हुई इस दौरान, इस पर एक रिपोर्ट लेकर आऊँगी आपके लिए आज. और फिर एक अंश होगा SBS हिंदी फ्लैशबैक से. फैसल फरीद की एक खास रिपोर्ट के साथ जानेंगे कुछ भूले बिसरे शाही व्यंजनों को जो फिर से जिंदा करने जा रहे हैं एक व्यक्ति, उनकी कहानी होगी. फिर आखिर में शो के मूड को बदलेंगे और लेंगे ताज़ा जानकारी मायानगरी की. इन सब के साथ साथ गीतों का सिलसिला भी चलता रहेगा. तो अगर आपकी कोई फरमाइश हो तो मुझे आप अभी लिख भेजिए. नंबर है 04397997667 और मेरी कोशिश रहेगी कि आज के शो में उसे ज़रूर बचा दूँ. तो बहुत कुछ होगा आज के प्रोग्राम में और आज के शो का एक खास सवाल भी होगा. पर आइए सबसे पहले एक जायज़ा ले लेते हैं आज के मुख्य समाचारों का. नमस्कार, शनिवार 23 मई 2026 के मुख्य समाचारों के साथ मैं हूँ स्वाति शर्मा. ऑस्ट्रेलिया की दो प्रमुख राजनीतिक पार्टियों के फेडरल और राज्य स्तर के नेता विक्टोरिया में नज़दीक आती चुनावी लड़ाई के बीच अपने समर्थकों को एकजुट कर रहे हैं. विक्टोरियन लेबर और लिबरल पार्टी के सदस्य नवंबर में होने वाले चुनाव से पहले आज 23 मई को मेलबर्न में वार्षिक राज्य बैठकों में शामिल हो रहे हैं. प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीजी और विपक्ष के नेता एंगस टेलर दोनों राज्य में मौजूद हैं ताकि वे अपनी अपनी राज्य पार्टी नेताओं जेसिंटा एलन और जेस विल्सन का समर्थन कर सकें. हालिया जनमत सर्वेक्षणों में संकेत मिला है कि विक्टोरियन गठबंधन को दो पक्षीय पसंदीदा आधार यानी टू पार्टी प्रेफर्ड बेसिस पर लेबर पर मामूली बढ़त हासिल है. सिडनी में आमने सामने हुई एक कार टक्कर में 3 लोगों की मौत हो गई है जिनमें एक व्यक्ति भी शामिल है जो पुलिस के वेलफेयर चेक के लिए घर पहुंचने के बाद वहां से तेजी से भाग गया था. शनिवार तड़के 12:25 पर दक्षिणी सिडनी के गायमिया बे स्थित एक संपत्ति पर मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी घटना की सूचना मिलने पर पुलिस अधिकारियों को बुलाया गया था. इसके बाद 42 वर्षीय एक व्यक्ति सफ़ेद ऑडी कार में वहां से निकल गया. कुछ ही देर बाद पुलिस को सूचना मिली कि एक ऑडी कार कंक्रीट बैरियर को पार कर पलट गई है और सेंस सूसी में लगभग 13 किलोमीटर दूर एक नीली टोयोटा सेडान पर जा गिरी. घटनास्थल पर उस व्यक्ति की मौत हो गई. वहीं टोयोटा के ड्राइवर और यात्री की भी जान चली गई जिनकी औपचारिक पहचान अभी नहीं हो पाई है. ऊर्जा मंत्री क्रिस बोवेन का कहना है कि ईंधन की राशनिंग की आवश्यकता पड़ने की संभावना नहीं है क्योंकि फेडरल सरकार आपूर्ति मजबूत करने के प्रयास जारी रखे हुए है. उन्होंने अपने साप्ताहिक अपडेट में कहा कि फिलहाल 43 दिनों का पेट्रोल उपलब्ध है जो पिछले सप्ताह की तुलना में एक दिन कम है, लेकिन ईरान संकट शुरू होने के समय से 5 दिन अधिक है. उन्होंने कहा कि डीजल का भंडार 38 दिनों का है जो पिछले सप्ताह के अपडेट से 2 दिन अधिक है. मंत्री बोवेन ने कहा कि बढ़ते हुए ये भंडार आने वाले हफ्तों और महीनों में देश की जरूरतों को पूरा करने के लिए बनाए जा रहे हैं और ईंधन राशनिंग की संभावना नहीं है. पीटर बक्सकिन को पिछले 4 दशकों में देश के सबसे प्रभावशाली एबोरिजिनल शिक्षा नेताओं में से एक के रूप में याद किया जा रहा है. यॉर्क पेनिनसुला के नरुंगा समुदाय से आने वाले पीटर बक्सकिन ने अपने करियर की शुरुआत एक शिक्षक के रूप में की थी. इसके बाद उन्होंने राज्य और फेडरल सरकार दोनों स्तरों पर वरिष्ठ कार्यकारी भूमिकाएं निभाईं और मंत्री सलाहकार के रूप में भी काम किया जहां उन्होंने इंडिजिनस शिक्षा में बड़े सुधारों का नेतृत्व किया। प्रोफेसर बक्सकिन ने यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ ऑस्ट्रेलिया में डीन के रूप में भी सेवा दी और साउथ ऑस्ट्रेलियन एबोरिजिनल ट्रेनिंग एंड एम्प्लॉयमेंट कंसल्टेटिव कमेटी की अध्यक्षता भी की। वहीं तुलसी गैबार्ड ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की राष्ट्रीय खुफिया निदेशक यानी डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस के पद से इस्तीफा दे दिया है। ट्रंप के दूसरे कार्यकाल के दौरान पद छोड़ने वाली वह चौथी कैबिनेट अधिकारी हैं। सोशल मीडिया पर साझा किए अपने इस्तीफा पत्र में उन्होंने कहा कि उनके पति कैंसर से जूझ रहे हैं, इसलिए उन्होंने इस पद से हटने का निर्णय लिया है। और अब खबर भारत से। रॉयटर्स से मिली जानकारी के अनुसार सरकारी स्वामित्व वाली भारतीय ईंधन कंपनियों ने इस महीने तीसरी बार पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी की है। डीलरों ने शनिवार को बताया कि ईरान युद्ध के बीच कच्चे तेल की ऊंची कीमतों से हुए नुकसान की भरपाई के लिए कंपनियां यह कदम उठा रही हैं। नई दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 87 पैसे बढ़कर 99.51 रुपये प्रति लीटर हो जाएगी, जबकि डीजल की कीमत 91 पैसे बढ़कर 92.49 रुपये प्रति लीटर की जाएगी। दुनिया में तेल का तीसरा सबसे बड़ा आयातक और उपभोक्ता भारत उन आखिरी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक था जिसने ईरान पर अमेरिका इसराइल युद्ध के कारण वैश्विक स्तर पर कीमतों में आई तेजी के बाद खुदरा ईंधन कीमतों में बढ़ोतरी की। 15 मई को घोषित ईंधन मूल्य वृद्धि भारत में पिछले 4 वर्षों में पहली बढ़ोतरी थी। आज के लिए मुख्य समाचारों में बस इतना ही। अन्य खबरों और जानकारियों के लिए जुड़े रहिए SBS हिंदी के साथ हमारी वेबसाइट sbs.com.au/hindi पर। धन्यवाद। तो दोस्तों, ये थी आज की सुर्खियां। जैसा कि मैंने शुरुआत में बताया कि भारत के नए हाई कमिश्नर भी हाल ही में सिडनी के व्यवसायी समुदाय के साथ मिले और उनसे कुछ बातचीत की। तो क्या कुछ रहा इस बातचीत में और क्या कहना रहा नए भारतीय उच्चायुक्त नागेश सिंह का, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में जिसे लेकर आ रही हैं वृषाली जैन।
3: भारत के नए उच्चायुक्त महामहिम नागेश सिंह ने कैनबरा में भारतीय उच्चायोग की कमान संभाली है। इस सप्ताह सिडनी के व्यापारी समुदाय ने अर्थ बिजनेस कनेक्ट के तत्वाधान में उनका स्वागत किया। हाई कमिश्नर ने सिडनी के अलग अलग व्यापारी मंडलों और समूहों को संबोधित किया, उनके साथ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस और चर्चाएं भी की। अपने संबोधन में भारतीय उच्चायुक्त नागेश सिंह ने सभी का आभार व्यक्त किया।
4: थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड यू नो मीटिंग मी टुडे। आई लुक फॉरवर्ड टू अ वेरी एक्साइटिंग रिलेशनशिप विद एवरीवन। एनीथिंग वी कैन डू, गांधी इज ऑलरेडी हियर बट इन कैनबरा एंड इन इंडिया, बैक होम इन इंडिया, प्लीज डोंट हेजिटेट टू रीच आउट टू अस। माय रिक्वेस्ट ऑलवेज रिमेन्स टू द कम्युनिटी दैट यू नो कीप द चैनल ऑफ कम्युनिकेशन ओपन, यू नो।
3: उन्होंने कॉन्सुलर सेवाओं और अधिकारियों की ओर से भी एक अपील की।
4: Nobody wakes up in the morning and says that today I am going to be nasty to somebody, you know, because normally the complaints against Indian embassy, the people are very nasty. And nobody wants to do his job badly. Everyone wants appreciation. I'm talking more in terms of the consular work for which maximum complaints come. Why these problems arise? At times there are genuine mistakes. Or there are circumstances which, you know, missing documentation or whatever. So keep the channel of communication open. And this is not just for the consular side, but even the conversation we were having between India-Australia relations, economic and commercial, you know, relationship, the problems we face in doing business in respective countries. Dialogue always helps. So all our emails are on the website. Shoot an email. Tell us what's happening, what you're thinking. How can we, you know, work together? Because, you know, everyone keeps saying, you know, you are the living bridge between our two countries.
3: उन्होंने कहा कि चुनौतियों की बात करने का अर्थ ये नहीं है कि रिश्ते सुंदर नहीं हैं।
4: I started with that to say, in happiness and sadness, we're all together. Communicate with us. We can all meet up and you know, let's build this relationship together. For you, this is homeland now. So the more India-Australia relationship gets strengthened, it's in the interest of both our countries and both our peoples.
3: कितना जरूरी है भारतीय उच्चायोग का यूं समुदाय के साथ एक संबंध स्थापित करना? सिडनी समुदाय से व्यापारिक और सामुदायिक प्रतिनिधियों में से एक शिवानंद क्योलार का कहना था कि
5: आई वुड से इट्स वेरी वेरी इम्पोर्टेंट वैशाली बिकॉज इन टर्म्स ऑफ अ कम्युनिटी पर्सपेक्टिव टू एक्चुअली गेट इन टच विथ हाई कमीशन हियर फ्रॉम देम हियर फ्रॉम काउंसिल जनरल अबाउट वॉट इज हैपनिंग इन इंडिया वॉट वी कैन डू फर्दर इज अमेजिंग सम ऑफ द अपॉर्चुनिटीज दैट दे डिस्कस टूडे was simply eye-boggling because many of us sometimes don't know the changes that are happening in India, right? And from a business leader's perspective, I would say the High Commissioner today spoke beautifully. We had a round table today in which he actually literally listed out what New India is about. And the statistics that he spoke was absolutely phenomenal.
3: समुदाय में सांस्कृतिक गतिविधियों में सक्रिय रहने वाले व्यवसाय अंबुबा ठाकुर ने भी इस बात से अपनी सहमति प्रकट की।
6: ठीक है, ये हम लोग जरूर सुनते आए हैं कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया का रिलेशन बेहतर होता जा रहा है, लेकिन व्हेन यू हियर इट, जब सुनते हैं फ्रॉम दी हॉर्सेज माउथ हिमसेल्फ, तो उसकी बात कुछ और होती है और उसमें कुछ नए पर्सपेक्टिव समझ में आते हैं। ये भी पता चलता है कि किन चीज़ों पर फोकस एक्चुअली है, तो इट इज़ डेफिनेटली अ वेरी वेरी वर्थवाइल एक्सपीरियंस, बहुत अच्छा लगता है। एक आत्मीयता, एक संबंध भी बनता है और उसका एक अलग ही फायदा है।
3: अर्थ बिजनेस कनेक्ट के संस्थापकों में से एक काउंसलर समीर पांडे भी हैं। वे बताते हैं कि राउंड टेबल में किस प्रकार की चर्चाएं रही।
7: इट्स एब्सोल्युटली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हम लोग इस तरह का राउंड टेबल अरेंज करें। वी बाउंस आइडियाज, वी हैव दैट कन्वर्सेशन विद सीनियर पीपल इन इन द गवर्नमेंट, विद हाई कमिश्नर, विद लीडर्स फ्रॉम द इंडियन डायस्पोरा। सो राउंड टेबल में, एज यू सॉ टुडे, वी हैड नंबर ऑफ पीपल फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ लाइफ। वी हैड पीपल फ्रॉम पॉलिटिकल बैकग्राउंड, वी हैड पीपल हु प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट एडवोकेसी रोल फॉर सिडनी एंड वेस्टर्न सिडनी। वी हैड साइंटिस्ट्स, वी हैड प्रोफेसर्स, academics, entrepreneurs. So we had all this cross-section of our community, and that's the beauty of Artha.
3: Earth Business Connect व्यापारियों का एक ऐसा मंच है जहां स्टार्टअप से लेकर के स्थापित व्यवसाय शामिल हैं। चर्चाओं का एक विषय राजनीतिक नेतृत्व से बातचीत शुरू करना भी रहा। सिडनी की ब्लैकटाउन सिटी काउंसिल में हिंदी 5 सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषाओं में से एक है। वहां के राज्य सांसद स्टीफन बाली भी हाई कमिश्नर से मिलने पहुंचे। SBS हिंदी से बात करते हुए स्टीफन बाली MP का कहना रहा कि
8: Look, it was absolutely fabulous to meet the new High Commissioner. It's just been appointed literally only a month or so ago. For him to come out to Parramatta, and I know he's doing his visits across Western Sydney, and to come to Blacktown. We have a wonderful Indian diaspora in Blacktown. Having the High Commissioner here is actually uplifting for the community, the people, their former homeland being India.
3: उन्होंने भारतीय लोगों को ऑस्ट्रेलिया के ताने बाने का एक अहम हिस्सा बताया। सांसद बाली ने कहा कि HC का प्रवासी समुदायों के लिए एक संदेश है।
8: Well, the High Commissioner is saying be proud of your past, but also make sure that you engage in the modern homeland that you're finding yourself in. So obviously Blacktown and Western Sydney, we have our challenges, but we also have lots of opportunities. And the Indian diaspora, it's amazing the wealth and advantage that they bring to us. The lowest unemployment, crime rates are down when you look at their community versus across the board. So you're making a fabulous difference in our community, bringing sport and everything and the arts and as well as sort of the business community heavily investing in the Blacktown area. And don't forget the food and the restaurants, how good are they and the sweets. So it's great.
3: वही मैचमेकर पारुल मेहता ने लघु उद्योगी होने के नाते पर अपनी बात रखी।
9: नागेश जी से मिलके बहुत अच्छा लगा, स्पेशली जब वो कैनबरा से यहाँ सिडनी की बिजनेस कम्युनिटी को मिलने आते हैं, लोगों से ग्रास रूट लेवल पे बात करते हैं, यहाँ की प्रॉब्लम सुनते हैं, एंड देन ही एक्चुअली बहुत अच्छे से उन्होंने सुना, नोट्स लिए, एंड वी आर वेरी होपफुल कि ऐसे ही जो ब्रिज बना है सिडनी और कैनबरा के बीच में, तो कहीं ना कहीं कम्युनिटी को, मेरे जैसे स्मॉल बिजनेस एंटरप्रेनर्स को, कहीं ना कहीं एक होस्ट मिलती है कि आगे चल के कुछ प्रॉब्लम होगी तो कोई सुनने वाला है।
3: और इंडियंस इन सिडनी के नदीम अहमद का भी कहना रहा कि
10: स्पेशली नाउ व्हेन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया रिलेशनशिप इज ऑन द न्यू एज सो वी वांट टू अंडरस्टैंड व्हाट हाई कमिश्नर विजन इज एंड हाउ एज अ कम्युनिटी एज अ बिजनेस वी कैन हेल्प दैट टू ग्रो दैट रिलेशनशिप।
3: वही महामहिम हाई कमिश्नर नागेश सिंह ने भारत और ऑस्ट्रेलिया के संबंधों को इतिहास में अब तक का सबसे मजबूत बताया।
4: So right now what I've realized that, you know, the relationship between India and Australia and every sphere, political, economic and commercial, defense and security, the people-to-people connect is going at a growth trajectory which I couldn't think of 10 years ago. And there are reasons for that. But, you know, in my 1 month here, talking to the leadership here in Australia, the political class, the bureaucratic class, some business people, you can see that, you know, these convergences are bringing our two countries together. And the biggest strength is the presence of this Indian diaspora here. And that's why I think the political class also reaches out to us as, you know, foreign diplomats here more than what they do to other country representatives. So let's work together.
3: ये राउंड टेबल्स और मेल मिलाप और भी दिलचस्प तब हो जाते हैं जब भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऑस्ट्रेलिया आने की चर्चाएं तेज हैं। अब ये यात्रा कब और कैसे होती है और हाई कमिश्नर के समुदाय के साथ बनते ये नए संबंध भारत और ऑस्ट्रेलिया के रिश्तों को कैसे प्रभावित करते हैं ये देखना अविशेष है। SBS हिंदी से आपके लिए इस रिपोर्ट को प्रस्तुत किया वैशाली जैन ने।
2: SBS हिंदी पर आप जुड़े हुए हैं स्वाति शर्मा के साथ। दोस्तों इस रिपोर्ट के बाद अब समय हो गया है पहले अंतराल का। ब्रेक के उस पार बताऊंगी आज का सवाल। बस हिंट दे देती हूँ कि आज का सवाल है मेलोडी से जुड़ा। तो सोचिए क्या हो सकता है आज का सवाल। जुड़े रहिए SBS हिंदी पर। वापस आकर आपके मैसेजेस आए हुए हैं बहुत सारे, उन्हें भी पढ़ेंगे। तो कहीं ना जाइए, जुड़े रहिए। मैं बस हाजिर होती हूँ इस छोटे से ब्रेक के बाद।
11: Starting a new life in Australia isn't easy.
12: A lot of companies have rejected me.
13: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
11: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
14: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
15: Your program will resume shortly. You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
16: Hi, I'm Janice Peterson from SBS World News. And I'm here to help you improve your English pronunciation. This short lesson is only about 5 minutes, so you can easily fit it into your day, perhaps on your lunch break.
17: SBS Learn English helps Australians speak, understand, and connect.
2: ब्रेक के बाद आपका फिर से एक बार स्वागत है SBS हिंदी पर। मैं हूँ स्वाति शर्मा। दोस्तों बहुत सारे आपके मैसेज आए हुए हैं, एक से एक शुरू करती हूँ। सबसे पहला मैसेज आया है ध्याना का। ध्याना ने बहुत सारे प्यार के साथ एक गाने की रिक्वेस्ट भेजी है, साथ ही कहा है नमस्ते लव योर शो, कैन यू प्लीज़ प्ले रात भर बाय अरिजीत सिंह। ध्याना मैंने ढूंढने की कोशिश की पर अनफॉर्चुनेटली मुझे ये गाना नहीं मिला। तो कोई और गाने की अगर आपकी इच्छा हो तो आप मुझे ज़रूर बताइए। उसके अलावा मेरे पास राजेंद्र वोरा जी का मैसेज आया हुआ है, जिन्होंने कल एक रिपोर्ट जो आपने सुनी थी माइग्रेशन के से जुड़ी पेरेंटल वीज़ा के बारे में, उन्होंने कहा बीते कल के प्रसारण में वीज़ा संबंधित जो प्रसारण हुआ उसके संबंध में मैं कहना चाहता हूँ कि मैं स्वयं पेरेंटल वीज़ा के लिए पिछले 7 साल से क्यू में हूँ। ना जाने कब मेरा नंबर आएगा, जबकि डिपार्टमेंट का क्यू लेटर मेरी फाइल में सुरक्षित है। उम्मीद करती हूँ राजेंद्र जी जल्दी से जल्दी आपका नंबर भी आ जाए। दोस्तों, इस जिस रिपोर्ट की राजेंद्र जी बात कर रहे हैं, ये रिपोर्ट आप सुन सकते हैं SBS हिंदी की वेबसाइट पर जब चाहें। उसके अलावा कुमार जी का मैसेज आया था मेरे पास, एक गाने की आपने भी फरमाइश की है कुमार जी, मैंने भी वो ढूंढने की कोशिश की, दम भर जो उधर मुँह फेरे। अनफॉर्चुनेटली ये भी गाना मुझे नहीं मिला आज, पता नहीं क्या हो रहा है मेरे साथ। दो गाने फरमाइश आई और मुझे नहीं मिल पाए। एक राजेंद्र वोहरा जी ने एक और गाने की भी फरमाइश की है, पाकीज़ा फिल्म का, ये मुझे उम्मीद है कि मिल जाएगा, मैं ढूंढूंगी। पर उससे पहले बताती हूँ आज का सवाल। तो मैंने आपको हिंट दिया था, सवाल जुड़ा है मेलोडी से। तो आज है नेशनल टॉफ़ी डे, टॉफ़ी कैंडी, जी हाँ। तो कुछ जगहों पर ऐसे फन डेज मनाए जाते हैं, तो उस तरीके से ये है नेशनल टॉफ़ी डे। और भारत की बात करूँ तो पिछले कुछ दिनों से मेलोडी की भी बड़ी चर्चा चल रही है, मेलोडी जो चॉकलेटी होती है, जी हाँ वही वाली। तो आज मेरा सवाल टॉफ़ी से जुड़ा है। आप आज मुझे बताइए कि आपके ज़माने की, आपके बचपन की, आपकी फेवरेट टॉफ़ी कौन सी थी। नंबर तो आपको पता ही है, नंबर है 04397997667। तो जब तक आप भेजते हैं अपने जवाब, मैं आपको ले चलती हूँ रामपुर, जहाँ फूड हिस्टोरियन डॉक्टर तराना हुसैन खान नवाबी दौर के भूले बिसरे शाही व्यंजनों को फिर से जिंदा करने में जुटी हैं। पुरानी रेसिपीज, पुराने खान सामे और शाही स्वादों की इस दिलचस्प कहानी में अब तक 40 से ज़्यादा डिशेज दोबारा तैयार की जा चुकी हैं। आइए सुनते हैं फैजल फरीद की ये खास पेशकश, जिसे मैं ला रही हूं आज SBS हिंदी फ्लैशबैक से।
18: सोचिए, अगर आपकी खाने की टेबल पर 200 से अधिक तरह के पकवान हो, कुछ ऐसा ही होता था जब राजा महाराजा नवाब और पुराने जमाने के रईस लोग खाना खाने बैठते थे। धीरे धीरे रियासत ख़त्म हो गई और वो सैकड़ों तरह के पकवान भी ख़त्म हो गए। अब तो फास्ट फूड का ज़माना है, लेकिन सोचिए अगर आपको फिर वही पुराने ज़माने के व्यंजन खाने को मिले तो कैसा लगेगा। कुछ ऐसा ही कर रही हैं रामपुर की फूड हिस्टोरियन डॉक्टर तराना हुसैन खान। रामपुर रियासत में नवाबी दौर के सैकड़ों व्यंजनों को उन्होंने पुनर्जीवित किया है। फिर से पुराने रसोइये और खानसामों की मदद लेकर उन्होंने इन व्यंजनों को बनाया है। इन शाही व्यंजनों को जब लोगों के सामने इन्होंने प्रस्तुत किया तो सभी ने कहा, अरे वाह, ऐसा भी खाना हो सकता है। कैसे किया ये सब डॉक्टर तराना ने, वे बताते।
19: नमस्कार, सलाम एंड गुड इवनिंग। मेरा नाम डॉक्टर तराना हुसैन खान है, मैं एक फूड हिस्टोरियन और राइटर हूँ। मैं इस रॉयल फूड्स की तरफ से मेरा रुझान शुरू में तो नहीं था, बल्कि खाने की तरफ भी नहीं था। मैं तो रिसर्च कर रही थी किसी और बुक के लिए, लेकिन इत्तेफाक से मेरा मैं रामपुर में रहती हूँ और वहाँ पे एक बहुत मशहूर लाइब्रेरी है, रामपुर रज़ा लाइब्रेरी, जो नवाबों ने बनाया है। उसमें बहुत बड़ा ज़खीरा है मैनुस्क्रिप्ट्स का। तो कुछ कुकबुक मैनुस्क्रिप्ट्स थी पर्शियन में 19वीं सदी की, जो कि मुझे इत्तेफाक से मिली, और उनको पढ़ने के बाद मुझे पर्शियन फारसी तो नहीं आती थी, लेकिन मैंने कोशिश करी कि एटलीस्ट उनका नाम पढ़ूं, जो डिशेस के नाम थे। तो पता मुझे चला कि तकरीबन 300 रेसिपीज़ हैं पुलाव और कोरमे की, और मैं बहुत ही हैरान हुई, क्योंकि हम लोगों के अब रामपुर में, जबकि वो नवाबी ज़माने का एक स्टेट था पहले, लेकिन अब हमारे यहाँ रामपुर में बहुत ही बेसिक, मतलब जैसे एक पुलाव है, जैसे नॉर्मल होता है पुलाव, कोरमा, कबाब, कुछ सब्जियाँ, कुछ मीठे, कुछ इतना नहीं था कि 300 कहाँ से डिशेस थी, कब बनती थी, और अब ये डिशेस कहाँ गई। तो ये जो सवाल था, इसने मेरे अंदर ये रुझान पैदा करा कि मैं इसके ऊपर रिसर्च करूं, और मैंने इस सिलसिले में कई आर्टिकल लिखे हैं, और मेरी किताब है देख टू दस्तरखान, किस्साज एंड रेसिपीज फ्रॉम रामपुर, और एक वॉल्यूम फॉरगॉटन फूड्स पे है, जो कि मैंने को एडिट करा है। तो यहाँ से मेरा सफ़र शुरू हुआ, और मैंने फिर ट्रांसलेशन शुरू करा इन रेसिपीज़ का, और कोशिश करी, अपनी सी कोशिश करी कि इनको बनाने की कोशिश करूं, जो कि बहुत ही मुश्किल था। खैर, कुछ खान वहाँ के रामपुर के खान सामों की मदद से मैंने कोशिश करना शुरू करी। कुछ बहुत ही ख़राब चीज़ें भी बनी, कुछ समझ में नहीं आता था जिस तरीके से वो रेसिपीज लिखी गई थी। लेकिन इस बीच मेरी मुलाकात प्रोफेसर शिवान लैम्बर्ट वली से हुई ऑनलाइन, वो भी एक आर्टिकल मैंने लिखा था अपनी कोशिशों के बारे में उसके ज़रिए, और उनसे बातचीत करते हुए फिर ये प्रोजेक्ट हमारा शुरू हुआ जिसका नाम था फॉरगॉटन फूड्स, जो कि आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज रिसर्च काउंसिल से फंडेड था, और ये यूनिवर्सिटी ऑफ शेफील्ड के अंडर में मैंने काम करा 2019 से 2024 तक, और इसमें मैंने रिसर्च करी, डॉक्यूमेंट्री डॉक्यूमेंटिंग, ओरल हिस्ट्री को रिकॉर्ड करना, और ऑफकोर्स राइटिंग एज वेल एज, इसके अलावा हम लोगों ने लगभग 40 रेसिपीज ऐसी की जो कि हमने फिर से रिवाइव करी रामपुर के खानसामों की मदद से और इनको प्रेजेंट करा। तो बहुत ही संक्षिप्त में ये मेरा सफर था।
18: वैसे तो सैकड़ों तरह के व्यंजन थे, लेकिन डॉक्टर तराना हुसैन खान ने अब तक 40 से अधिक शाही व्यंजनों को पुनर्जीवित किया है। ये सब व्यंजन उन्होंने पुराने कुक उनके शिष्यों की मदद से बनाए। पर्शियन में लिखी हुई स्क्रिप्ट जिसमें इनकी रेसिपी लिखी थी उसको एक बार इन्होंने फिर से पुनर्जीवित किया है।
19: रामपुर में जब रियासत थी जाहिर उस वक्त स्पॉन्सरशिप थी नवाबों की, बहुत ही रईस नवाब थे, और उस ज़माने में 200 डिशेस नवाब के टेबल पे होती थी। 1949 में रामपुर का मर्जर हुआ इनटू द इंडियन यूनियन आफ्टर इंडिपेंडेंस के बाद। उसके बाद एक इकोनॉमिक निगलेक्ट हुआ, और स्पॉन्सरशिप नहीं होने की वजह से जितने जो खानसामा थे वो भी नवाबों ने अपने पुराने खानसामा उनको निकालना पड़ा, जाहिर है उनके पास इतने रिसोर्सेज नहीं रहे। ये खानसामा जो थे इनको लगा कि भई हम किस ये खानसामा गिरी जो कोई ऐसा प्रोफेशन नहीं है जो कि हम अपने बच्चों को सिखाएं, क्योंकि ये रेसिपीज जो थी वो अप्रेंटिसशिप या जिसे आप शागिर्दी कहते हैं उसके थ्रू ही एक खानसामा से दूसरे खानसामा को सिखाई जाती थी। जब वो सिलसिला ख़त्म हो गया तो ये खानसामा जो थे इन्होंने भी अपने जो भी उनके राज थे जो भी उनके रेसिपीज थी वो उन्होंने किसी को नहीं बताई और अपने साथ ये राज लेके चले गए। बहुत कई सालों तक 1970s तक तो ये डिशेस धीरे धीरे कुछ डिशेस एटलीस्ट 1970s तक बनती रहीं जिनका हमें जिक्र मिलता है कुछ मेमोर्स में, लेकिन उसके बाद का जो नेक्स्ट जनरेशन आया उनको ये रेसिपीज पता ही नहीं थी, और इस तरह धीरे धीरे भाई 70 से भी तो 50 साल हो गए, तो इन 50 सालों में ये सारी रेसिपीज बिल्कुल ही गायब हो गई, और सिर्फ इनका जो भी थोड़ा बहुत जो सेकेंडरी सोर्सेज या मेमोर्स में इनका जिक्र या कुछ पुराने लोगों की जबान से इनके बारे में हमने सुना था। तो जब मैंने इंटरव्यूज करना शुरू करे तब मुझे एहसास हुआ कि कितना बड़ा खजाना हमारा खो गया है, और अब वो पुराने खानसामा नहीं है लेकिन कुछ उनके शागिर्द थे जिनके साथ हमने काम किया जिन्होंने कुछ अपने उस्तादों से सीखा था, मगर वही क्योंकि इतने रिसोर्सेज और लोगों के पास भी नहीं थे कि वो इन खानसामाओं को रख पाते या उनकी रेसिपीज ले पाते। तो इस तरह धीरे धीरे करके ये सारा खजाना जो एक तरह से कल्नरी खजाना था वो धीरे धीरे गायब बिल्कुल ख़त्म हो गया, इस तरह से कि रामपुर का जो कुजीन है वो बिल्कुल एक ऑर्डिनरी कुजीन बन गया जिसका कोई डिस्टिंक्शन नहीं था और बाकी कुजीन से। आप कह नहीं सकते थे कि भाई रामपुर कुजीन कोई ख़ास चीज़ है, लोगों को इसके बारे में पता नहीं था क्योंकि इसके जो इम्पोर्टेंट डिशेस थी वही गायब हो चुकी थी।
18: ऐसा नहीं है कि बस पुरानी रेसिपी उठाई और व्यंजन बनाना शुरू, बहुत सी डिशेस तो वो कई बार कोशिश के बाद भी नहीं बना पाई, जो बन गई उनको दिल्ली और भोपाल में इन्होंने लोगों के सामने पेश किया, लोग भी हतप्रभ रह गए। ये काम बहुत ही सब्र और मेहनत का था, लेकिन डॉक्टर तराना ने इसको बखूबी अंजाम दिया।
19: जी, तो ये जब हमने खानसामाओं के ये पुराने ट्रांसलेशन लेके और खानसामाओं के साथ इनके ऊपर मैंने काम किया, ऑफ कोर्स मेरी फंडिंग थी फॉरगॉटन फूड्स प्रोजेक्ट से फंडिंग थी, नहीं तो इतना बड़ा काम करना बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं था. इंडिविजुअल लेवल पे तो आप कर ही नहीं सकते थे. तो जब ये एक्सपेरिमेंटल कुकिंग हमने शुरू करी, फिर इनको पूरा नोट किया, तो लगभग ये 40 रेसिपीज ऐसी थी, 40-42 रेसिपीज ऐसी थी जो कि हमें लगा कि हाँ ये फनसामा सीख भी गए हैं, कुछ उनकी भी इनपुट्स थी और मिलजुल के हम इसको प्रेजेंट कर सकते हैं. तो हमने इसको पहले तो IIC दिल्ली में प्रेजेंट करा और वहाँ पे बहुत सक्सेसफुल हुआ. मतलब जिससे भी हमने बात करी, रॉयल फैमिली के लोग भी आए वहाँ पे और उन्होंने भी ट्राई आउट करा, और जिन लोगों ने वहाँ पे खाया ये सारी रेसिपीज, तो उनको ये जायका बिल्कुल ही अलग लगा. उन्होंने कभी ऐसे खानों का नाम भी नहीं सुना था, तो बहुत सक्सेसफुल था. फिर हमने 4-day फेस्टिवल करा, रिवायत रामपुर करके फेस्टिवल करा, जहनुमा पैलेस होटल भोपाल में, और वहाँ पे भी बहुत सक्सेसफुल हुआ. लगभग 2000 के करीब लोग जो थे वो इस 4 दिन के फेस्टिवल में आए. कुछ लोग तो 2-2 बार आए, और हर दिन हमने कुछ नया प्रेजेंट करने की कोशिश करी. तो हम भी अपने तरफ से इनोवेट और फनसामाओं के साथ बैठ के इनोवेट कर रहे थे, उनकी रिक्वायरमेंट जो रेस्टोरेंट ओनर की रिक्वायरमेंट थी उसको लेकर, और उनको भी हमने अपनी रेसिपीज सिखाई. जहानुमा पैलेस होटल के जो खानसामा थे उनको भी हमने सिखाई, क्योंकि हमारा एम है कि इसको फिर से हम रिवाइव करें. और इसकी कोशिश जो है ये जारी है. अभी हाल ही में मैं एक कुकबुक पे काम कर रही हूँ जो कि ब्लूम्सबेरी पब्लिश करेगी, जिसमें ये 40 रेसिपीज मैंने अपने PI प्रोफेसर शिवान लैम्बर्ट होली के साथ मिलके ये रेसिपी बुक जो है ये मैं पब्लिश करूंगी. और मुझे उम्मीद है, क्योंकि ये इतनी आसान हमने बना दी है कि एक ऑर्डिनरी होम कुक जो है वो इन्हें बना सके. इसमें इंग्रेडिएंट्स, इसके मेथड सिंप्लीफाई इसने कर दिए हैं कि आप घर में आसानी से बना सकें और इसका जायका ले सकें. कुछ रेसिपीज ऐसी हैं जो कि हम बिल्कुल भी नहीं बना पाए, जैसे एक स्वीट होती थी दरे बहेश, जिसका हमने जिक्र बहुत सुना, लेकिन उसको हम कभी नहीं बना पाए, जबकि उसके इंग्रेडिएंट्स बहुत सिंपल थे, लेकिन उसकी वे ऑफ मेकिंग जो है, स्किल जो है, वो बिल्कुल ही ख़त्म हो गया है. तो डिज़ास्टर्स तो होते हैं, मगर हम ये कह सकते हैं कि लगभग 40 ये रेसिपीज, कम अज कम ये 40 रेसिपीज हम लोग प्रेजेंट कर रहे हैं अब एक कुक बुक की शक्ल में.
18: पुराना गौरव सिर्फ इमारतें नहीं होती हैं, खान पान भी संस्कृति का हिस्सा है, और डॉक्टर तराना उसको सहेज रही हैं. लखनऊ से फैसल फरीद.
2: तो दोस्तों, खाने की बात हो रही है, दस्तरखान की बात हो रही है, तो इसी माहौल को कायम रखते हुए ला रही हूँ मैं आज आपके लिए शो का पहला गीत. उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगा. साथ ही कुछ मैसेजेस भी हैं जिनका जायजा ले लेती हूँ. मेरे सवाल के जवाब आए हुए हैं. मैंने आज पूछा है कि आपके बचपन की या आपके ज़माने की कौन सी टॉफ़ी आपकी बेहद पसंदीदा थी. तो कुमार जी बताते हैं कि आई लाइक एक्लेयर्स. जी हाँ, वाकई वो जो अंदर चॉकलेट आती थी, आहा. और ध्याना कहते हैं कि माई मम्स चाइल्डहुड चॉकलेट मेमरीज किस मी एंड रेवल गॉन. ध्याना, आपकी मम्मी कितनी, आप कितनी उम्र की है, मुझे लग रहा है कि ये तो मेरे ज़माने की है.

और राजेंद्र जी ने बताया कि जब हम छोटे होते थे तो उस समय मेट्रो टॉफी आती थी जो बहुत अच्छी होती थी। ये तो मैंने नहीं सुनी, तो आपकी भी कोई पसंदीदा टॉफी होती थी बचपन में? मुझे भेज दीजिए अपने जवाब 04397997676 पर।

0: और यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के उस पार बदल जाएगा शो का रुख। बातें होंगी माया नगरी की, और जारी रहेगा गीत संगीत भी। इस बीच मेरे सवाल के जवाब भेजना मत भूलिएगा। कौन सी है आपके जमाने या बचपन की आपकी फेवरेट टॉफी? नंबर है 04397997667। मैं हाजिर होती हूँ इस छोटे से ब्रेक के बाद।
1: Starting a new life in Australia isn't easy.
2: A lot of companies have rejected me.
3: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
1: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
4: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
5: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
6: SBS News In-Depth Podcast, देश और दुनिया भर के समाचार जो अहमियत रखते हैं, सुनिए SBS News In-Depth आपके पसंदीदा पॉडकास्ट ऐप पर या sbs.com.au/audio पर जाएं।
7: क्या आपको SBS हिंदी सुनना अच्छा लगता है? अपनी बातचीत हमसे जारी रखिए हमारे फेसबुक पेज पर। हमारा पेज लाइक करें। SBS हिंदी फेसबुक पर भी है।
1: Starting a new life in Australia isn't easy.
2: A lot of companies have rejected me.
3: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
1: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
0: ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। SBS हिंदी पर आप जुड़े हुए हैं स्वाति शर्मा के साथ। तो वादे के मुताबिक चलिए घुमाते हैं शो की इस गाड़ी का पहिया, और रुक करते हैं माया नगरी की खबरों का नेहा के साथ बॉलीवुड टाइम में।
8: SBS रेडियो हिंदी के प्रोग्राम बॉलीवुड टाइम में आपका स्वागत है। मैं हूँ नेहा। बॉलीवुड टाइम में सबसे पहले बात करते हैं अजय देवगन और अक्षय कुमार की। अजय देवगन और अक्षय कुमार की दोस्ती फिर चर्चा में है। खबर है कि अक्षय ने धमाल 4 की रिलीज डेट आगे बढ़ा दी है ताकि वेलकम टू द जंगल को बॉक्स ऑफिस पर क्लीन विंडो मिल सके। पहले धमाल 4 4 जुलाई 2026 को रिलीज होने वाली थी, अब फिल्म 17 जुलाई 2026 को सिनेमाघरों में आएगी। वहीं वेलकम टू द जंगल 26 जून 2026 को रिलीज होगी। दोनों बड़ी मल्टी स्टारर कॉमेडी फिल्में हैं। मेकर्स नहीं चाहते थे कि दोनों फिल्मों के बिजनेस पर असर पड़े। अभिनेता वीर पहाड़िया अपनी अगली फिल्म बेनाम के साथ एक नए सिनेमाई सफर के लिए तैयार है। इस अपकमिंग एक्शन थ्रिलर फिल्म में वीर लीड रोल में नजर आएंगे। माना जा रहा है कि बेनाम एक रूटेड एक्शन एंटरटेनर है जिसमें दमदार इमोशंस के साथ हाई ऑक्टेन एक्शन सीक्वेंस देखने को मिलेंगे। इसके अलावा फिल्म में कमर्शियल अपील वाला म्यूजिक एल्बम भी शामिल होने की उम्मीद है। मेकर्स का लक्ष्य एक्शन, इमोशन और मनोरंजन के बीच संतुलन बनाते हुए दर्शकों को एक दमदार सिनेमाई अनुभव देना है। जंगली म्यूजिक ने बॉलीवुड की बहुप्रतीक्षित फिल्म वेलकम टू द जंगल का टाइटल ट्रैक रिलीज कर दिया है। कृष्णा और चिट्ठी एक ऐसी फिल्म सामने आ रही है जो सीधे दिल और आत्मा को छूने का वादा करती है। 29 मई को देश भर के सिनेमा घरों में रिलीज होने जा रही ये फिल्म केवल भगवान श्री कृष्ण की कहानी नहीं है, बल्कि हर उस भक्त की कहानी है जिसने कभी अपने भगवान को एक चिट्ठी लिखी हो, कभी मन ही मन उनसे बात की हो। कृष्णा और चिट्ठी केवल एक धार्मिक फिल्म नहीं बल्कि भक्ति, प्रेम, विश्वास और भगवान की लीला का ऐसा अनुभव है जो हर उम्र के दर्शकों को अपने जीवन से जुड़ा हुआ महसूस होगा। 29 मई को ये फिल्म केवल सिनेमा घरों में नहीं आएगी बल्कि करोड़ों भक्तों की भावनाओं और उनके भगवान के साथ रिश्ते को बड़े पर्दे पर जीवंत करेगी। बॉलीवुड सुपरस्टार संजय दत्त अभिनीत बहुचर्चित फिल्म आखिरी सवाल अपने रिलीज के बाद से ही लगातार सुर्खियों में बनी हुई है और अब इस फिल्म के खाते में एक और बड़ी उपलब्धि जुड़ने जा रही है। संयुक्त अरब अमीरात में फिल्म पर लगे कड़े प्रतिबंध और देश के भीतर चल रही कानूनी कूटनीति के बीच इस फिल्म को राष्ट्रपति भवन में प्रदर्शित करने का गौरवपूर्ण फैसला लिया गया। राष्ट्रपति भवन के विशेष सभागार में इस फिल्म की एक हाई प्रोफाइल स्क्रीनिंग आयोजित की जाएगी जिसमें राजनीति और कला जगत की कई नामचीन हस्तियों के शामिल होने की खबर है। हालांकि मेहमानों की आधिकारिक सूची को अभी सार्वजनिक नहीं किया गया है। फिल्म द नर्मदा स्टोरी रिलीज से पहले ही लगातार चर्चा में बनी हुई है और अब इसका हाई वोल्टेज एंथम सॉन्ग सामने आते ही सोशल मीडिया पर जबरदस्त चर्चा शुरू हो गई है। वीर रस, देशभक्ति, महिला सशक्तिकरण और खाकी के सम्मान से भरपूर ये एंथम महिला पुलिस के साहस, संघर्ष और समर्पण को बड़े पैमाने पर दिखाता है।
9: बन के तबाही शत्रु को तूने धूल चटाई, वीर सिपाही लड़के लड़ाई।
8: अभिनेत्री अनुप्रिया गोयनका इन दिनों अपनी आने वाली फिल्म बॉम्बे स्टोरीज को लेकर लगातार चर्चा में बनी हुई हैं। ये फिल्म कांस फिल्म फेस्टिवल में दिखाई जा रही है। किसी भी कलाकार के लिए कांस तक पहुंचना एक बड़ी उपलब्धि है और अनुप्रिया के लिए भी ये मौका बेहद खास है क्योंकि ये उनकी पहली इंडिपेंडेंट फिल्म है। इसकी कहानी मशहूर लेखक सआदत अहसन मंटो की चर्चित कहानी हतक से प्रेरित है। फिल्म में समाज के उस हिस्से की कहानी दिखाई गई है जिसके बारे में अक्सर लोग खुलकर बात नहीं करते। फिल्म में सेक्स वर्कर्स की जिंदगी, उनके संघर्ष, समाज के नजरिए और उनके भीतर छिपी भावनाओं को दिखाने की कोशिश की गई है। फिल्म मेकर मीरा नायर ने हाल ही में मशहूर चित्रकार अमृता शेरगिल के जीवन से प्रेरित अपनी नई फिल्म अमरी का ऐलान किया। अमृता प्रीतम की जिंदगी को बड़े पर्दे पर उतारने की सबसे बड़ी कोशिश संजय लीला भंसाली ने की थी। गुस्ताखिया नाम के प्रोजेक्ट पर वो लंबे समय तक काम करते रहे हैं। हालांकि फिल्म आगे नहीं बढ़ पाई। भंसाली के अलावा डायरेक्टर जसमीत के रीन ने भी अमृता प्रीतम और साहिर की कहानी पर काम शुरू किया था। शाहरुख खान इसे प्रोड्यूस करने वाले थे और संभवतः खुद साहिर का किरदार भी प्ले करते। वहीं अमृता प्रीतम के रोल के लिए सबसे ज्यादा चर्चा प्रियंका चोपड़ा जोनस के नाम की थी। हिंदी सिनेमा की सबसे चर्चित अधूरी बायोपिक्स में से एक बनी हुई है जिसका इंतजार दर्शकों को सालों से है। बॉबी देओल स्टारर बंदर का पहला गाना क्यों मजा आ रहा है रिलीज हो चुका है। गाने में उनका किरदार और भी गहराई से सामने आया है।
10: ये दिल लगाने के ताजे तरीके क्यों मजा आ रहा है।
8: बॉलीवुड की धक धक गर्ल माधुरी दीक्षित की अपकमिंग फिल्म माँ बहन की रिलीज डेट आखिरकार सामने आ गई है। ये डार्क कॉमेडी क्राइम ड्रामा फिल्म 4 जून 2026 को OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगी। मेकर्स ने इसका नया टीजर भी जारी कर दिया है। फिल्म माँ बहन के टीजर में माधुरी दीक्षित, तृप्ति डिमरी और धारणा एक कंबल में लिपटी लाश को घसीटते हुए नजर आती है। तभी दरवाजे की घंटी बजती है और माहौल में अचानक तनाव बढ़ जाता है। ये फिल्म OTT की सबसे मजेदार और अलग कॉमेडी फिल्मों में से एक साबित हो सकती है। इन दिनों भारतीय अभिनेत्रियां कांस फिल्म फेस्टिवल में वेस्टर्न ड्रेसेस में अपना जलवा बिखेर रही हैं। वहीं अभिनेत्री हुमा कुरैशी ने अपने भारतीय लुक से सभी को हैरान कर दिया। हुमा पारंपरिक बनारसी साड़ी में नजर आ रही हैं। अभिनेत्री ने तस्वीरें पोस्ट कर लिखा, एक ऐसा बुना हुआ परिधान पहनने में कुछ बेहद खास बात है जो ऐसा महसूस कराता है मानो उसने सदियों का सफर तय किया हो। सिंगर अदनान सामी का नया गाना रिलीज हो गया है। गाने का टाइटल लिपस्टिक है। ये गाना सेल्फ कॉन्फिडेंस और अपनी अलग पहचान को सेलिब्रेट करता है। गाने में लड़कियों से लेकर पुरुष, बुजुर्ग सभी लोग लिपस्टिक लगाते नजर आ रहे हैं।
11: नैनों में तेरे कचरे की धार रे, लिपस्टिक लगा के नजर उतार रे, लिपस्टिक लगा।
8: जम्मू कश्मीर पैरा क्रिकेट टीम के कप्तान आमिर हुसैन लोन अपनी जबरदस्त काबिलियत के लिए जाने जाते हैं। आमिर के दोनों हाथ नहीं हैं, वो गर्दन और कंधे में बैट फंसाकर बैटिंग करते हैं, वो पैरों से गेंदबाजी करते हैं। उनकी जिंदगी पर एक फीचर फिल्म बनने वाली है। कान फिल्म फेस्टिवल में इसका ऐलान हुआ है। इस अपकमिंग फिल्म का निर्देशन निशिल शेट करेंगे। वो भारतीय लेखक और निर्देशक हैं। इस फिल्म का मकसद लोन की जिंदगी, उनके संघर्षों और क्रिकेट के मैदान में उनकी उपलब्धियों को सबके सामने लाना है। आश्विन महाराज प्रस्तुत नया रोमांटिक गीत आजा सजना मेरे ख्वाबों के अंगना रिलीज हो गया है।
10: आजा साजना मेरे ख्वाबों के अंगना।
8: बॉलीवुड टाइम में आज बस इतना ही, बाय बाय।
0: एक और प्यारा सा गीत आपके नाम कर रही हूँ, पर इस बीच अपने जवाब मुझे भेजते रहिए। सवाल है कि आपके जमाने की आपकी फेवरेट टॉफी कौन सी थी।

0: हेमलता पुरोहित जी का मैसेज आया है. नमस्ते स्वाति बहन एंड योर टीम, नाइस टू हियर योर ब्यूटीफुल वॉइस आफ्टर लॉन्ग टाइम. व्हेन आई वाज अ लिटिल गर्ल माय फेवरेट चॉकलेट वाज रेबल गम. थैंक्स.
1: फूलों में गलियों में या मेरे ख्वाबों की गलियों में.
0: इसी बात पर मैं भी बता दूं, मेरी फेवरेट टॉफी थी जो पान पसंद हुआ करती थी.

दोस्तों, इसी के साथ घड़ी की सुइयों ने इशारा कर दिया है कि मुझे अब जाना होगा। जाते जाते मेरे सभी श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद और स्पेशल मेंशन उन सभी को जिन्होंने मैसेज भेजकर मेरा साथ दिया। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का शो पसंद आया होगा। कल फिर से हम हाजिर हो जाएंगे एक नए प्रोग्राम, नई खबरों, नए मुद्दों के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, खुश रहें, सेहतमंद रहें और मुझे दीजिए इजाज़त। SBS हिंदी के कार्यक्रम में आप सुन रहे थे स्वाति शर्मा को। शुभरात्रि।

0: बंद करो ये बकवास, कोई नामी गाना शुरू करो।
1: I love Bollywood music.
2: Love Bollywood?
3: This is the place, the Bollywood session on SBS South Asia.

ladies and gentlemen, this is your captain speaking. आज की फ्लाइट में आप सबका स्वागत है. हमारा क्रू आपका बहुत ख्याल रखेगा, लेकिन आपसे एक निवेदन है कि अपनी चोली टाइटली बांध लें ताकि दिल बाहर ना गिर जाए.

0: देसी डांस पार्टी ऑन SBS साउथ एशियन।
1: सोहरी लच के जब कमरिया हसारा जिला।

जैसे मैं रणवीर सिंह पिंग कहां कहां करूं मुझे बता दे तुझे खुश रखूंगा लाइफ टाइम मेरा ये वादा बेबी जितना मुझे प्यार है दिल्ली के मोमो से उतना तुझसे प्यार

0: Miss the name of a song? Find out anytime on the SBS audio app or website.
1: आ गए ना सब पार्टी में, अब खींच रहे फोटो किस सिक करके.

जहां से देखता है मैं गलत हूँ तू सही, देख मेरी नजरों से गलत में कुछ गलत नहीं, करना है जो करके ही रहूंगा मैंने तय किया, गलत को भी सही तरह से करने का निश्चय किया।

इख्तियार जैसी होशियारी ये फिजूल है, तेरा ख्याल ठेकेदार है तू वक्त का, बदल के रहता है ये वक्त का उसूल है। हरकतों पे कब तलक मेरी नजर रखेगा तू, करते करते पहरेदारी एक दिन थकेगा तू। मैं मगर नहीं थकूंगा, फैसला ये है किया गलत को भी सही तरह से।

Desi Dance Party on SBS South Asian.

बच्चन बच्चन बच्चन बच्चन पांडे।

0: Your news from here and hits from home.
1: SBS South Asian.

मेरे अगे जो बनती सी वैसे तू वो नहीं सी आ दिल तेरा इन्ना काला तू कदे कीता मैनू शो नहीं सी चल ठीक है जिमें भी है गल मुक्की चंगी है आ तेरे अर्गी नालों तो यारी टुटी चंगी है यारी टुटी चंगी है।

news from here and hits from home. SBS South Asian.

0: दिकड़ी दिकड़ी दिकड़ी दिका दिकड़ी दिक दिकड़ी दिकड़ी दिकड़ी दिकड़ी दिकड़ी दिकीरो दिकीरो दिकीरो
1: दिकीरो दिकीरो दिकीरो।

0: Dancing far and style.
1: Slow down, boys.

0: I go.
1: Yo, yo, honey singer. चलती रहेगी आज सारी रात दारू, तुम बोतलें तैयार कर लो। पीने के लिए कोई वार नहीं होता, तुम मेरा एतबार।

बड़ा सुकून मिला है जब उस टाइम मेरी बात हुआ है। हजार रात में वहाँ भी एक रात हुआ है। आँख उठा के देखे जब वहाँ मेरे को नहीं, वह एक पल भी पूरी कायनात हुआ है। वह एक पल भी पूरी कायनात हुआ है।

message, eh?